श्री व्याघ्र नगरी वासे हुलिकाम्बा देवी कृपा करी उत्तिष्ठ जमदग्नि प्रीते पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ दैत्यग्ने उत्तिष्ठ जगदम्बिके उत्तिष्ठ सकलाराध्ये त्रैलोक्यं रक्षणं कुरु उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ दैत्यग्ने उत्तिष्ठ जगदम्बिके उत्तिष्ठ सकलाराध्ये त्रैलोक्यं रक्षणं कुरु उत्तिष्ठ हुलिगाम्बा दयामयी राजपुत्री उत्तिष्ठ शान्तजमदग्नि महर्षि पत्नी शार्दूल नाम पुरवासिनी राम मातः श्रीजगदम्बा हुलिगाम्बा तव सुप्रभा।